केला दादा शरासू केला सनी दादर नो बसे उयान उयान गर्दा शियां सबा बोल दियां दुदुलुं जबा बोल दियां ना